तुम ऐको असत रेडियो सारंग 107.8 FM ई रंग रंगाळजीनी आता मी ऐकूया कार्यक्रम आयतरसो संदेश मानादिक डोलपी सेरावो आता शिकवण दिता।

0: ताशो रूपसी बरीब सुबराम पम राम पम फो रूपसी बरीब सुबराम पम राम पम फो
1: one two three four
0: one two three four five